तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। ओ अल्लाह, एवरी वन ट्रेडिंग योर पाथ हैज टेकन ऑफ। वी डोंट नो हाउ हाई दे आर फ्लाइंग ऑलरेडी, बट आई एम लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट स्टिल ऑन द ग्राउंड, अनएबल टू टेक ऑफ। And every time I take off, nafs and shaitan, they fire at the petrol tank of that plane. They throw missile and they bring it back onto the ground. You try to take off, indulge in sins and come back again. Everyone, O Allah, in your beautiful garden are all flowers. I am the only one who is a thorn in that beautiful garden of yours, O my Allah.

है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं।

मांगता हूँ, वो हो जाए मेरा मैं हो जाऊँ उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ कोई

मस्त रहूं सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं।

ऐसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।